0: आवाज को सीआरबीटी 0144116697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0144116697
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 6021033 8
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 6021033 9